0: हैप्पी हैप्पी कुकीज।
1: कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, कभी मॉक टेस्ट में मार्क्स स्टेबल नहीं रहते। 9th, 10th फाउंडेशन स्टेज से हो या 11th, 12th में जेई नीट प्रिपरेशन, हर एस्पिरेंट एक डिफिकल्ट फेज से गुजरता है, जहां एफर्ट ज्यादा होते हैं पर आउटपुट कम दिखाई देता है। चाहे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी हो या जेई नीट में रैंक इम्प्रूव करनी हो, राइट मेंटरशिप डायरेक्शन देता है और स्ट्रेटेजिक प्रेप से टाइम मैनेजमेंट बैलेंस होता है। यहाँ होंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, DPP विद सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चर्ड क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट 24/7 डाउट सपोर्ट्स के साथ और भी स्पेशल फीचर्स। तो वेट मत कीजिए, आज ही एनरोल कीजिए।

0: शुक्रवार को कभी डिप्लॉय ना करें जब तक आपके पास होस्टिंगर की प्रबंधित Node.js होस्टिंग ना हो। एक मासिक शुल्क, अनुरोधों या बैंडविड्थ की कोई सीमा नहीं, छुपे हुए शुल्क नहीं, सीधे गिटअप या अपने डेवलपमेंट वातावरण से शिप करें। एक डोमेन, ईमेल और SSL मुफ्त में प्राप्त करें। आप कोड लिखते हैं, हम उसे चलाते हैं। आज ही होस्टिंगर पर जाएं और अपना Node.js वेब ऐप डिप्लॉय करें।
1: Design the perfect voice for your brand with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the number one AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today.

0: आइसक्रीम आपसे कुछ भी करवा सकता है। चॉकलेटी यम्मी सो टेस्टी यू वांट टू
1: हैव मोर। फोकस मोड ऑन। पीडब्ल्यू के साथ क्रैक करो जेई। पीडब्ल्यू के जेई बैचेस के साथ आपको मिलता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशंस, 24/7 डाउट सपोर्ट एंड फ्री एआईटीएस, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स और शुरुआत सिर्फ 3,000 रुपए से। इंजीनियर बनना है तो स्मार्ट प्रिपरेशन भी पीडब्ल्यू के साथ ही शुरू करो। ज्वाइन पीडब्ल्यू बैचेस अभी।

0: चिप्स दे दो
1: मुझे भी।
0: यार तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट इतनी लाइट कैसे?
1: यूपीआई लाइट से।
2: यूपीआई लाइट में बस एक अमाउंट डालो और बैंक स्टेटमेंट की हर छोटी ट्रांजैक्शन की एंट्री से मुक्ति पालो। यूपीआई लाइट, लोड मत लो।

0: बाल कम दिखने लगे तो तुम भी कम दिखने लगोगे क्या?
1: जेनेटिक है, क्या ही करूं?
0: जेनेटिक्स हो या कुछ और, द्राया है ना?
2: Smile please.
0: द्राया वो है जो डर को डराते हैं.
3: तो हिम्मत कम क्यों? माउंटेन ड्यू अब 20 में 400 में.

स्मार्ट पढ़ो, स्ट्रॉन्ग बनो और अनस्टॉपेबल रहो। पीडब्ल्यू के सभी नीट बैचेस के साथ आपको मिलते हैं लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डिंग, ताकि अगर कभी लाइव क्लास मिस हो तो आप सुन सकें। 24/7 डाउट सपोर्ट, ताकि कोई डाउट भी अब ना रह जाए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, एंड चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट सिर्फ 3000 से है शुरुआत। तो अगर डॉक्टर बनना है तो स्मार्ट चॉइस करनी पड़ेगी। ज्वाइन पीडब्ल्यू नीट बैचेस अभी नाउ।

कैसे कम करें, इसके अंदर फीस कैसे लो करें, क्या तरीका है? तो पहला तरीका ये है कि आप सैट का एग्जाम दो, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हो अपने घर पे बैठ के, या आप ऑफलाइन भी दे सकते हो फिजिक्स वाला के सेंटर पे जाके। और इसके रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है, आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्टर कर सकते हो।

पहला मैच खास होता है, इसलिए कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ स्टेडियम में एक खास सीट हो जाए, कुछ मीठा हो जाए।

0: भी 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

दोस्तों वक्त हो चुका है, 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप रेशा टून कर रहे थे 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर नमस्ते।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैम।
0: धन्यवाद सर।
1: जो गीत मुझे सुनना है पिक्चर का नाम है गिरफ्तार और गीत के बोल है धूप में निकला न करो रूप की रानी गोरा रंग काला न पड़ जाए।
0: तुम्हारे आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आरबी गुजर, गाना फिर से रूप।
0: हम कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कायराना की है जिंदगी की सजा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी सजा, सुनिएगा ना। हेलो।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कैसी थी वो नजर।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस मोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: रोहित मीना।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: सुनापुर सिटी
0: से। कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तेरी गली से घर छोड़ के।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमान।
1: नम्मा दफ्तर
2: की रह गया सी, एही बस जो तमाशा करन आ गया। चला जाए तू, चला जाए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: वंशल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाम।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जी शहनाज।
2: कहाँ से बात कर रहे?
1: संजय कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सिलसिले मुलाकातों के।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: मॉर्निंग सर, मैम क्या है आपका?
1: मंजूरा टिकान में.
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना मैं वो वाला
0: है जी,
1: हमें तुमसे प्यार.
0: हमें तुमसे प्यार है.
1: हाँ
0: ओके मैम. ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश.

0: नमस्ते मैडम।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: रतन लाल बोल रहा हूँ, ममकला से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये रोम रोम पर बसने वाले राम जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू।
1: सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे,
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
4: शहर का नया मैजिक। रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
4: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते सर, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आवेश जी से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: किसार से सुनता हूँ।
0: मुझे पता है, इसलिए तो मैं पूरा चला था, बस लास्ट
1: किसार से
0: कोडिंग ऑटोमेटिक गाना बताओ सर।
1: मतलब ये है लोग यहाँ
0: ओपन सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत।

वक्त हो चुका है 10:50 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरी साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026 हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा हम क्या देते हैं AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स
1: नमस्कार दोस्तों
2: हेलो
3: नमस्ते
2: नाम क्या है आपका
3: पलक
2: कहाँ से बात कर रहे
3: हैं सुनापुर सिटी
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
3: मुमताज
2: ओके मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश कर रहे हैं हेलो

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते, काम क्या है आपका?
3: निशा शर्मा गंगापुर सिटी से बोल रही हूँ।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: ये मेहंदी के बूटे इनके रंगा नौकरी है।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सवाई माधोपुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चलाती
0: चुन्नी में ये नहीं चलते हैं।
1: पंजाबी तो चल जाएंगे।
0: हाँ पंजाबी चल जाएंगे, बताओ कौन सा चलाना है। इच्छा दे लेके ओके।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: निकिता।
1: कहाँ से बात कर रही हूँ? कौन सा गाना सुनना चाहोगी? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जमरपुर।
0: नाम क्या है आपका?
1: कुलदीप।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मिया केरा।
0: मिया केरा।

0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परेश खाना। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मेरा नाम सोहेल सैफी है।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: यार गाना सुनना चाहते हैं, मेरी महबूबा तो होती है तो नंबर सो में सो देता।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए, दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे,
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे
4: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेरा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
2: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली।
5: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
6: डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो
2: जी मैम, उमा शंकर पटेल
1: सर। नमस्ते सर, कहाँ से बात कर रहे हो? उमा शंकर जी
2: पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: जान तेरे नाम फिल्म का गाना है, मैं फर्स्ट टाइम देखा तो मैं खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया।
1: तो सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026 हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा हम क्या देते हैं AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE and CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स
1: नमस्कार दोस्तों
2: मनीषा
3: कहाँ से बात कर रहे हो
2: रेलवे कॉलोनी
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी
2: दिल को लगा के लुट जाना इश्क है
3: ओके मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए मैम

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:40 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरी साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो,
1: क्या है सर आपका?
0: धीरूभाई ठाकुर, गंगापुर सिटी माउकला।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तम्मा तम्मा ले लो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम बाबू खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तुम्हारी नजर तू खपा हो गई।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े
0: जी। कहाँ से बात कर रहे?
1: छत्तीसगढ़।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कोई सा भी सुना देंगे।
0: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी फिल्म।

0: हेलो
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: तन्नु।
2: कहाँ से बात कर रहे हो तन्नु जी?
1: अरे वो गाना लगवाना
2: था जी। गाना तो लगाएंगे, तो एड्रेस को बता दो, कहाँ से बात कर रही?
1: गंगापुर से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मेहंदी लगा के रखना।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: नमस्ते, तो नाम क्या है आपका?
1: सागर बोल रहा हूँ, जैसे
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है मोहब्बत चीज है क्या, मोहब्बत करके देखेंगे।
0: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: कोमल।
3: कहाँ से बात कर रही
4: हूँ? गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी मैम?
4: इन आँखों में तुम जब से हो गई गुम।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा

0: दोस्तों।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सावित्री।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: शीशा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना।

0: किसे पाछे इतना फिरे
1: जितने ते। हेलो, हाँ जी, नाम क्या आपका? आपने हाँ से बात कर रही हूँ। गंगापुर सिटी कौन सा गाना सुनना चाहो?

0: हेलो
1: हेलो मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम मैम शिवम कुमार गुप्ता, मैं डीएस में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गाना सुनना चाहोगे शिवम जी?
1: तू चोरी पलावर पाउडर खुशबू आवे महकी महकी,
0: ये नहीं चलेगा। दूसरा गाना बताइए, ऐसे गाने नहीं चलते अपने एफएम पर।
1: मेरा बल बल मा थानेदार चलावे जैसे।
0: ओके, ये चला रहे हैं ना थोड़ी थोड़ी।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते दीदी।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: लतीफ अहमद रैना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: कश्मीर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: राजा हिंदुस्तानी का।
1: तो गाने की वो
0: आई हो मेरा जिंदगी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या आपका?
0: मेरा नाम प्रिंस है।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सुहावला।
1: कैसे सुनाओगे आपकी फरमाइश? गाना

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: किरण वर्मा, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: एक से है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं
0: आप?

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: पूरम मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सवाई माधोपुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: नैना के तीर।
1: कौन सा?
0: नैना के तीर।
1: नैना के तीर
0: जी मैम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: रोहित।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी, आदर्श नगर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: एक परदेसी मेरा दिल लगाया।
1: अभी चला। टाइम लगेगा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना?

0: हेलो मैम।
1: हाँ जी नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मैम मलिक नाम है मेरा, गंगापुर सिटी से बोल रहा हूँ। कयामत फिल्म से सॉन्ग सुनना मुझे, एतवार नहीं करना।
1: सर
0: कयामत फिल्म से, अजय देवगन की कयामत फिल्म है, एतवार नहीं करना।
1: ओके सर सुना रहा हूँ, आप भी फरमाइश करिएगा।
0: थैंक यू मैम,
1: यू वेलकम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर

दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त अर्ची फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: 89.6 रेडियो DS।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
5: DS साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सुन रहे हैं नए इधराने कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों रेडियो पर संगीत के साथ साथ जब तक छोटी-छोटी बातें चटपटी बातें नहीं होती तो मजा ही नहीं आता। बिल्कुल जी हाँ, लेकर चलता हूँ आपको छोटी-छोटी बातचीत में। यूं तो गर्मियों में बहुत सारे काम है जिन्हें हम आमतौर पर करते रहते हैं, पर आज हम छोटे से बिंदु पर चर्चा करते हैं और चर्चा का विषय रहेगा नींबू खाने से गर्मी में कौन कौन से फायदे होते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आज आपको रेडियो डीएस लेकर चलेगा नींबू पानी से लेकर हर तरह के जो भी नींबू को हम दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं उनके बारे में जानकारी के साथ, और मिलेंगे इसके बाद एक नए टाइटल सॉन्ग के साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: ऋषि मीना, नमस्कार सुनने वाले दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि मीना। आज राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी चरम पर है, लू चल रही है, पसीना बह रहा है और थकान हावी हो रही है। ऐसे में बाजार से महंगे जूस और एनर्जी ड्रिंक्स लेने से पहले एक बार अपने किचन की तरफ देखिए। वहाँ मौजूद है एक छोटा सा नींबू, जो गर्मी का सबसे सस्ता और सबसे असरदार साथी है। आज हम बात करेंगे गर्मी में नींबू के फायदे। तैयार है ना? चलिए शुरू करते हैं। ऋषि मीना, सबसे पहला और सबसे जरूरी फायदा, बॉडी को कूल रखना। नींबू प्राकृतिक रूप से शरीर का तापमान कम करने में मदद करता है। गर्मी में जब आप नींबू पानी पीते हैं तो शरीर अंदर से ठंडक महसूस करता है। आयुर्वेद में भी नींबू को पित्त दोष को शांत करने वाला माना गया है। दूसरा फायदा, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। गर्मी में हमारा शरीर बहुत तेजी से पानी और नमक खोता है। सादा पानी पीने से सिर्फ पानी की पूर्ति होती है, लेकिन नींबू पानी में विटामिन सी, पोटेशियम और नेचुरल शुगर मिल जाता है। इससे डिहाइड्रेशन की समस्या कम होती है और थकान भी जल्दी दूर होती है। तीसरा बड़ा फायदा, इम्यूनिटी बूस्ट। गर्मी में बीमारियां भी साथ आती हैं। वायरल फीवर, गले की खराश, पेट खराब। नींबू में भरपूर विटामिन सी होता है, जो सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। रोज सुबह खाली पेट एक ग्लास नींबू पानी पीने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। ऋषि मीना, चौथा फायदा, पाचन तंत्र को दुरुबात्मक रखना। गर्मी में भूख कम लगती है और भारी खाना खाने से पेट खराब हो जाता है। नींबू हाजमे को सुधारता है, एसिडिटी कम करता है और कब्ज की शिकायत भी दूर करता है। पांचवा फायदा, वजन कंट्रोल और स्किन ग्लो। जो लोग गर्मी में वजन बढ़ने से परेशान हैं, उनके लिए नींबू पानी बहुत अच्छा है। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण चेहरे पर पसीने और धूल से होने वाले दाग धब्बे भी कम होते हैं। स्किन ब्राइट और फ्रेश दिखती है। छोटा ब्रेक म्यूजिक, 5 सेकंड।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

दोस्तों अभी आपने सुना ये ट्रैक नहीं नंबर वगैरह, और इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको एक छोटी सी वार्ता में। दोस्तों अगली वार्ता का हमारा विषय रहेगा आम आदमी में गैस्ट्रिक समस्या से बहुत ग्रसित पीड़ित रहता है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे बिंदु ऐसे बताएंगे रेडियो डिस के माध्यम से जो आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन लाएंगे। सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो डी एस 89.6 पर।

ऋषि मीना। नमस्कार सुनने वाले दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो DS 89.6 पर। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि मीना। आज राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी चरम पर है, लू चल।

इंट्रो म्यूजिक सॉफ्ट हेल्दी टोन 8:10 सेकंड ऋषि मीना। नमस्कार सुनने वाले दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि मीना। आजकल गर्मी के मौसम में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और जलन की शिकायत बहुत आम हो गई है। गलत खान पान और तनाव के कारण ये समस्या हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मनुष्य गैस्ट्रिक समस्या से बचने के लिए क्या करें, सटीक और व्यावहारिक जानकारी के साथ। ऋषि मीना, सबसे पहले समझते हैं कि गैस्ट्रिक समस्या क्यों होती है। ज्यादा मसालेदार तला भुना खाना, अनियमित भोजन, तेज चाय कॉफी, स्मोकिंग और तनाव मुख्य कारण हैं। बचाव के प्रमुख उपाय। पहला, समय पर और सही मात्रा में खाना। रात का खाना रात 8 बजे तक पूरा कर लें। भोजन अच्छी तरह चबाकर खाएं। ज्यादा खाने से बचें। छोटे छोटे अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना बेहतर है। दूसरा, पाचन को मजबूत करने वाले घरेलू उपाय। सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। जीरा, सौंफ या अजवाइन का पानी बनाकर पिएं। ये गैस और एसिडिटी दोनों में राहत देता है। अदरक का छोटा टुकड़ा या अदरक वाली चाय पाचन बढ़ाती है। दही और छाछ नियमित रूप से लें, लेकिन ठंडा न पिएं। तीसरा, खान पान में सावधानी। मिर्च मसाले, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स कम करें। फल जैसे पपीता, केला और अनार पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। रात में दूध में हल्दी मिलाकर पिएं, ये पेट की सूजन कम करता है। ऋषि मीना, चौथा, जीवन शैली में बदलाव। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें। तनाव कम करें, गहरी सांस लेने या योग का अभ्यास फायदेमंद है। रात को अच्छी नींद लें। धूम्रपान और शराब से पूरी तरह दूर रहें। महत्वपूर्ण सावधानी, अगर आपको बार बार एसिडिटी, उल्टी, वजन घटना या खून वाली उल्टी मल हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: जी मीना, नमस्कार। गंगापुर सिटी और आसपास के सभी सुनने वाले दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो DS 89.6 पर। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि मीना। परीक्षाओं का मौसम चल रहा है, रात रात भर पढ़ाई, मोबाइल और कम नींद, ये आम हो गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे भरपूर नींद की। अच्छी नींद विद्यार्थियों के लिए सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल ब्रेन टॉनिक है। भरपूर नींद के प्रमुख फायदे: दिमाग तेज होता है, अच्छी नींद से याददाश्त मजबूत होती है और नई चीजें जल्दी सीखने में मदद मिलती है। एकाग्रता बढ़ती है, क्लास में ध्यान लगता है, पढ़ाई में फोकस रहता है, मूड अच्छा रहता है, चिड़चिड़ापन, तनाव और डिप्रेशन कम होता है, इम्यूनिटी मजबूत, बीमार पड़ने की संभावना घटती है, शरीर का विकास, किशोरावस्था में नींद हार्मोन बैलेंस करती है और हाइट व एनर्जी बढ़ाती है। विद्यार्थियों के लिए नींद के बेहतरीन सुझाव: एक, रोज रात 10 बजे तक सोने की कोशिश करें और सुबह 6 बजे उठें। कम से कम 7 से 8 घंटे नींद जरूरी है। 2, पढ़ाई के साथ मोबाइल और लैपटॉप को सोने से 1 घंटा पहले बंद कर दें, ब्लू लाइट नींद खराब करती है। 3, रात का खाना हल्का और जल्दी लें, भारी खाना पेट खराब कर नींद बिगाड़ता है। 4, सोने से पहले 10 मिनट गहरी सांस लें या हल्का संगीत सुने। 5, दिन में 20-30 मिनट व्यायाम या खेलकूद जरूर करें, इससे रात की नींद गहरी होती है। ऋषि मीरा, याद रखिए, जो विद्यार्थी अच्छी नींद लेता है वो कम समय में ज्यादा पढ़ लेता है। रात भर जगकर पढ़ने से ज्यादा फायदा 7 घंटे सोकर सुबह पढ़ने से होता है। गंगापुर सिटी के सभी छात्र छात्राओं से मेरी अपील है, नींद को कभी कॉम्प्रोमाइज न करें। रेडियो DS 89.6 हमेशा आपके बेहतर भविष्य की कामना करता है। मैं ऋषि मीना आपसे विदा लेता हूँ।

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: तो वक्त हो चुका है, तो बज चुके इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है

0: 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों भी आपने थोड़ी देर पहले सुने थे नए तराने कार्यक्रम, थोड़ी देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे,
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

बीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं AIIT J

0: 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।

तो वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं इस वक्त। आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बोली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:58 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
0: गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे राजस्थानी कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों 4:05 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पा रहे। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं राजस्थानी गीत।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
5: DS साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: And number
1: just a second, stop. Good news.

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे 89.6 रेडियो ओडिया गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों अभी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम। दोस्तों करते हैं आपके इंतजार की घड़ी खत्म और कीजिए थोड़ा सा इंतजार, लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है 20 साल बाद, और गाने के बोले हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: यू वेलकम सर।

0: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम है अय्यूब सलमानी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: ये रंगापुर सिटी से।
1: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं दिले नादान पे इस बेईमान पे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: है आपका?
1: आरबी गुजर।
0: कहाँ से बात कर रही हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: लक तक चल साथ मेरे।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा?
1: एलिश यादव का।
0: समझ में नहीं आ रहा मैम।
1: राव साहब वाला।
0: ओके, हेलो।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: कदर करो कदर, जब तक है तब तक कदर करो, वरना 89.6 रेडियो डीएस ट्यून इन कर रखा है आपने, और हमारे धरती का, हमारे पृथ्वी का 71% हिस्सा क्या आपको पता है, पानी है। यहाँ तक कि हमारे इंसान के शरीर का 75% से भी ज्यादा हिस्सा पानी का होता है। और इंटरनेट पे तो वैसे भी लोग राजस्थान को मानते पानी से वंचित प्रदेश, लेकिन मैं नहीं मानता यार, हमारे पास बहुत पानी है, और खासकर विंटर्स के दौरान भैया हमसे ज्यादा पानी, खासकर गंगापुर सिटी से ज्यादा पानी कोई नहीं बचाता, क्योंकि हम नहाते ही नहीं, पर गाने बहुत सुनते हैं क्योंकि हम ट्यून इन करके रखते हैं पूरे दिन 89.6 रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: तभी मैं सोचूं कि इनका रंग ऑरेंज क्यों नजर आता है। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आप ज्यादा कैरेट या फिर गाजर खाओगे तो आपके शरीर का, आपके स्किन का रंग ऑरेंज हो जाएगा। तभी मैं सोचूं कि यूएस के जो एक्स प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो ऑरेंज क्यों दिखते हैं, पर उसे हमें क्या, हमें दिखने से नहीं, हमें सुनने से फर्क पड़ता है। और सुनेंगे वही अमेजिंग गाने रेडियो डीएस 89.6 पे।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

देखो देखो देखो देखो, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो सुनो, आप ऐसी चीजें बिल्कुल मत करना। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और जाने का समय हो गया, फिलहाल टाइम टू गो, कल मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले, अगर आपने कभी एयरपोर्ट से ट्रेवल किया तो आपको पता है कि अगर एक्स्ट्रा लगेज ले जाओगे तो आपको फिर पैपे यानी कि पैसे देने पड़ेंगे। पर एक बार क्या हुआ, इन शख्स ने भैया एक्स्ट्रा पैसे देने से बचने के लिए 60-60 शर्ट्स पहन लिए और 9 जीन्स एक के ऊपर एक पहन लिए ताकि एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। अब इस चीज का आप कैसे वाइजली यूज करोगे मुझे नहीं पता, पर फिलहाल गाने सुनो, अपने मन को रिलैक्स करो 89.6 रेडियो डीएस पे। 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती। रेडियो डीएस, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: तेरी याद सताए तो हम खाते जाएं, तेरे सिवा शायद बता हम कहाँ जाएं।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6 शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: DS रेडियो DS रेडियो
3: DS यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरतर।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: हाँ जी, खाटू जाने वाले सभी शाम प्रेमी हैं, लेकिन कुछ उनमें बाबा के लाडले हो जाते हैं। ये भजन उन लाडले भक्तों के लिए। जय

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: बेरंग सी दुनिया में जब रंग बहता है शाम का प्रेमी सारी दुनिया से बस

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: जय श्री राम। मैं

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस

करते हैं।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्जुन।

तो पूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो हो। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। रफी साहब का सबसे प्रिय शौक था पतंग उड़ाना। उनकी पतंगे काले रंग की हुआ करती थी। हवा में उड़ती हुई काली पतंग इस बात का संकेत होती थी कि रफी साहब अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। वो अपनी पतंग के लिए मांझा पंजाब से मंगवाया करते थे। पतंग उड़ाने की बात आती थी तो हमेशा मृदुभाषी रहने वाले रफी काफी प्रतिस्पर्धी हो जाया करते थे। उनको किसी से भी अपनी पतंग कटवाना कतई पसंद नहीं था। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। मोहम्मद रफी साहब के जीवन का एक बड़ा अनोखा पहलू भी हुआ करता था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। मोहम्मद रफी साहब के साथ कई शो करने वाली कृष्णा मुखर्जी बताती है, रफी साहब स्टेज पर जाने से पहले अपना चांदी का कंगा निकालकर अपने गंजे सर पर फेरते थे, शरारती ढंग से मुस्कुराते थे, इसके बाद वो ठंडा दूध का एक गिलास पीते थे। स्टेज पर उनकी ऊर्जा देखने लायक होती थी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ अपने खाली समय में मोहम्मद रफी, मेहंदी हसन और गुलाम अली के गजलें सुना करते थे। उनके बेटे शाहिद रफी बताते हैं कि रविवार को बच्चों के साथ कैरम और बैडमिंटन खेलना उन्हें काफी पसंद था और उन्हें बॉक्सिंग मैच देखने का भी बहुत शौक था और उनके अब्बा खाने के बेहद शौकीन थे। रफी साहब की बातें अनगिनत हैं। उनकी गायकी के किस्सों पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। आज के लिए सफरनामे में इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी 89.6 DSFM पे। मैं तनीषा,
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

90 दिन यार, 90 डेज कैसे? ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 और रेडियो डीएस। और कई बार मैं देखता हूँ कि जो जुड़वे होते हैं ना, उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं होते, कोई 2 मिनट पहले पैदा होता है, कोई 2 मिनट बाद होता है, वो आपस में भैया दीदी कह के बुलाते हैं। पर ये ऐसे ट्विंस है जो 30 मार्च 1996 में पैदा हुए थे, और दोनों ट्विंस के बीच 90 डेज का फर्क है, 90 दिन। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, जिनके जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आपका काम सवाल करना नहीं, सिर्फ सुनना है। क्या गाने 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: तभी तभी मैं अपने टाई को ना बिल्कुल ऐसे नीचे पहनता था, पेट तक टाई आ जाती थी, पर मेरे पीटी सर दे पिटाई करते मेरे। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 DS। और एक भैया रियल वाली बात है, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स का कहना है कि जो टाई हम पहनते हैं और अगर टाई बहुत टाइट हो तो हमारे ब्लड फ्लो, ब्रेन तक जो ब्लड जाता है उसके फ्लो में 7.5% तक की कमी आ जाती है। इसीलिए टाई जब भी पहनो लूज पहनो, लेकिन गाने जब भी सुनो शानदार सुनो। कहाँ सुनोगे? यही सुनोगे और कहीं नहीं, रेडियो DS 89.6 पे।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नहीं नहीं नहीं, आपको ये बात भी पता नहीं था, लेकिन आज का शो यही तक था। फिलहाल टाइम टू गो। जाने से पहले मैं आपको बता के चाहूंगा, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और हमारे शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कहाँ है? बताओ बताओ बताओ, हमारे कानों के पीछे, हमारे कान में, उसको कहते हैं हम स्टेपल्स बोन। और अगर ये हड्डी टूट जाए या कुछ भी डैमेज हो जाए तो भैया सुनने में दिक्कतें होती है, पर फिलहाल ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो भैया, क्योंकि अमेजिंग गाने आने वाले जिसको सुन के आप बोलोगे आहा मजे आ गए। कहाँ पे? 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: आए, ठहरे और रवाना हो गए। जिंदगी क्या है, सफर की बात है। हैदर अली जाफरी के इस शेर के साथ मैं तनीषा 89.6 डीएस एफएम पर आपके फेवरेट सेगमेंट सफरनामे में आपका स्वागत करती हूँ।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। आज की हमारी फिल्म है जब प्यार किसी से होता है। सन 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म को सलमान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म में सलमान खान ने मासूम, गुड लुकिंग और आकर्षक दिखने वाला एक युवा सूरज का किरदार निभाया है। सूरज को प्यार का असली मतलब तब समझ में आता है जब वो कोमल नाम की लड़की को अपना दिल दे बैठता है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। सफरनामे में आज की आखिरी फिल्म है अंदाज अपना अपना। ये एक बहुत ही कॉमेडी मूवी थी। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई। फिल्म में आमिर खान, सलमान खान, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन जैसे मुख्य कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने निर्देशित किया था। ये एक हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म के दौरान आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। जब भी आप देखोगे, पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक आपकी हंसी नहीं रुकेगी। आमिर खान, सलमान खान शानदार है और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी शानदार है। और परेश रावल का क्या कहना, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस फिल्म का संगीत आपको पुराने दिनों की याद जरूर दिलाएगा। आज के लिए इतना ही। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: शोला शोला।